दैट इज किशोर कुमार एंड आशा भोंसले फ्रॉम द मूवी चलती का नाम गाड़ी. द नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू प्ले इज फ्रॉम द 1957 मूवी दो आंखें बारह हाथ, कंपोज बाय वसंत देसाई एंड संग बाय लता मंगेशकर. सैया झूठों का बड़ा सरदार निकला.